समारोह में हमारे बीच में पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आरएन रवि जी, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है और उस अनुभव का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरियाणा राज्य के महामहिम प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, जो बंगाल की धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने बंगाल के सामाजिक राजनीतिक साहित्य लेखन सहित यहां के बदलाव के लिए एक लंबे समय तक जिनका अनुभव रहा, उनके अनुभव का लाभ हमें मिला है। अभी कुछ दिनों पहले सीएपीए के सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा में भी हमें उनका मार्गदर्शन मिला था। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता है, दिशा देता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र बोस जी, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस विधानसभा के अंदर प्रशिक्षण समारोह आयोजन किया, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक जिनके विधायक रहने का अनुभव है, सामाजिक राजनीति क्षेत्र में अनुभव है, अभी पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहता है, तपस राय जी, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन आपको मिला, उड़ीसा की अध्यक्ष, सिक्किम के अध्यक्ष और अन्य माननीय अध्यक्ष महोदयों का भी, सांसद महोदय का मार्गदर्शन आपको मिला, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, निश्चित रूप से मुझे पश्चिम बंगाल में बहुत सालों बाद आना हुआ। मैं 7 साल से लोकसभा अध्यक्ष के नाते दायित्व निभा रहा हूं, लेकिन इस विधानसभा में लंबे समय बाद प्रशिक्षण समारोह आयोजन हुआ और प्रशिक्षण के साथ देश और राज्य के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका मार्गदर्शन मिला। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी धरती पर तप तपस्या से जो अल्प आयु के अंदर जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद देश और दुनिया के अंदर उस कालखंड के अंदर उन्होंने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का ध्वज लहराया, नेतृत्व किया, उनको याद करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी को जब हम याद करते हैं तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति शह शरीर रहे न रहे, लेकिन व्यक्ति का जीवन दर्शन, उनका विचार, उनका कर्तृत्व और लंबे समय तक उनका दिया गया योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन भी देश के युवाओं को

को, सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक नेतृत्व को एक नई दिशा देता है, हमेशा ऊर्जा की, समर्पण भाव की, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हम मानव जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं और युवाओं की ऊर्जा का सामर्थ्य क्या है, ये स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है और आपको भी यही दायित्व आज मिला है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है। ये विश्वास, ये भरोसा कायम रहे, हम उनके विश्वास भरोसे उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करें और उस राज्य के विकास की नई इबादत भी लिखें, क्योंकि ये राज हमेशा विचारों के, आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति और अलग अलग कालखंड के अंदर एक नए बदलाव को, राष्ट्र को नई दिशा देने का राज्य रहा है और इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कालखंड की विधानसभा के सदस्य के रूप में आपके विधानसभा के अंदर आपके वक्तव्य, आपके विचार, आप संसदीय संवाद, चर्चा, लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा, चुनौती और उनको सपनों को पूरा करने का दायित्व आपका है और मुझे खुशी है दो दिन तक आपने जिस गंभीरता से, जिस तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, मनोयाग के साथ, मनोयोग के साथ जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है वो आपके जीवन में नई दिशा देगा। लेकिन सीखने और अनुभव और विचारों का साझा करने में कोई विराम नहीं होता, ये तो हर रोज सीखना पड़ता है, हर रोज अनुभवों को साझा करना पड़ता है और तकनीकी डिजिटल युग में तो हमें रोज देश और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप यहां से नई चेतना लेकर जाएं और जीवन में इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता कि आपको विधानसभा का नेतृत्व करना, राज्य के नेतृत्व करने का मौका मिला है और हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक बने। हम एक विधानसभा के विधायक हैं, यहां हमारा नेतृत्व हमें करना चाहिए लेकिन राज्य के आकांक्षी राज्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कार्य योजना, कानून बनाना, राज्य के विकास, नवाचार, उसमें किस तरीके से विधानसभा संवाद चर्चा से हम राज्य को नई दिशा दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी आपकी है और इसीलिए जीवन में हमेशा उत्साह रहे, उमंग रहे, पैर में चक्कर रहे, हमेशा अपने क्षेत्र सहित राज्य में घूमते रहें, पैर में चक्कर, सीने में आग हो बदलाव की, नया देने की और सिर में ठंडक हो। जब संवाद करें, चर्चा करें तो ठंडे दिमाग से चर्चा करें, जब जन संवाद करें तब भी और विधानसभा के अंदर भी, नारेबाजी करना, सदन को व्यवधान करना, सदन के गतिरोध करने से कभी कोई नेता नहीं बनता। अगर सदन का नेता बनना है तो तर्क से बात करनी होगी, तथ्यों से बात करनी होगी, विचारों का संप्रेषण करना होगा और किस तरीके से जो कुछ भी अनुभव है उस अनुभव को इस विधानसभा के माध्यम से और जो नवाचार कर रहे हैं उस विधानसभा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम करें।
इसलिए विधानसभा

सभा का ये लोकतंत्र का मंच बहुत प्रभावी होता है। यहां से बनने वाला हर नेता राज्य उद्देश्य का नेतृत्व करता है। इससे मेरा बार बार आपसे आग्रह है कि सीखने और सिखाने के साथ जो कुछ भी समाज जीवन के अंदर एक मतदाता से आप कुछ चीजें मिलेगी, विधानसभा के अन्य सदस्यों से मिलेगी, अन्य विधानसभाओं के सदस्यों से विचार मिलेंगे, हमेशा विधानसभा के अंदर जब आप अपने विचार को रखें तो सब आपके विचारों को सुने। जब आप तर्क रखें, तथ्य रखें, विचार रखें, देश और राष्ट्र हित भी हो, प्रदेश की जनता में बदलाव कैसे किया जा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आप समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज आप, जनता आपको इसलिए चुनकर भेजती है कि आप उनकी कठिनाइयों, उनकी चुनौतियों को तो सदन में रखो सही, लेकिन उसके साथ साथ इस राज्य के विकास के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी आप हो। क्योंकि सरकारों को भी विधानसभा के एक इस कक्ष से जो आवाजें मिलती है, जो अलग अलग स्वर मिलते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, अलग अलग विचार मिलते हैं, हर विधानसभा की कठिनाइयां चुनौतियां मिलती है, उसको सरकार अगर सकारात्मक रूप से ले कि एक विधायक ने एक प्रश्न उठाया तो क्यों उठाया है, क्या कठिनाई चुनौतियां थी, एक विधायक ने अगर प्रदेश की कुछ चुनौतियां उठाई है तो क्यों उठाई है, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है तो समाधान होता है और समाधान होने से ही राज्य का विकास होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि जीवन में सादगी रखें, शुचिता रखें, विहार में विनम्रता रखें, लेकिन हमेशा प्रदेश के विकास की आग आपके सीने में लगी रहनी चाहिए, हमेशा लोगों के विश्वास भरोसे को और मजबूत करने का काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब इस विधानसभा की चर्चा संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, हम इसकी उच्च कोटि की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा हो जहां चर्चा संवाद की गुणवत्ता बढ़े, जहां पर सब विचारों को आए, सबके अनुभव आए और निश्चित रूप से उन अनुभवों की का लाभ समाज और देश को मिले। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब कानून का विषय हो तब हम जनता से फीडबैक भी लें, सरकार को सुझाव भी दें, विधानसभा में कानून बनते हुए अपना पक्ष भी रखें, क्योंकि कानून जनता के लिए बनते हैं। जब विधानसभा कानून बनाती है तो हर विधानसभा सरकार का एक ही मत रहता है कि उस कानून से उनके जीवन में कैसे सुगमता आ सकती है, उनकी जीवन के अंदर जो दिनचर्या के काम में जो अवरोधक आते हैं उसमें अवरोधों को दूर करने में काम आते हैं। और इसीलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रिफॉर्म, हर चीज में रिफॉर्म की आवश्यकता है। एक आम व्यक्ति की चुनौतियों के अंदर सरकार का कोई भी सिस्टम अगर चुनौतियां बनता है तो उसका समाधान, उसका रिफॉर्म इसी विधानसभा से निकलना चाहिए। हमें एक आदमी को जितनी हर कार्य में सुगमता हो, एक आदमी को लगे कि ये शासन मेरा है, ये शासन के विधायक मंत्री मेरे जवाबदेही से काम कर रहे हैं, उतनी शासन की सफलता होगी। और इसलिए आपकी सफलता भी ये होगी कि आपके पास अगर एक सामान्य व्यक्ति भी आता है
तो सामान्य व्यक्ति के कागज

0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাবেন।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
2: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. The musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Shri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
1: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और

0: Tanpura par Koel Shaha.
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Shaha.
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन।

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्यलय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिमी एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका।